तेरी ज्योति जगाए आ जाओ मैया ओ डिवाइन मदर प्लीज कम टू माय डोर एंड लाइट माय लाइट मींस टू से लाइट द लाइट ऑफ माय लाइफ वी गोना कंटिन्यू विद द वॉइस ऑफ हरि ओम शरण एंड द सॉन्ग ऐसा प्यार बहारे मैया ओ डिवाइन मदर is only your love flows within me. Let's enjoy the voice of Hari Om Shah.

तुम से दूर रहते दैट्स द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार वी गोना नो सॉरी लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी वी गोना कंटिन्यू विद अनदर डुएट दिस वन इज डन बाय अनुराधा पौडवाल एंड मोहम्मद अजीज द सॉन्ग इज दुनिया में कितना धाम है एंड दिस इज फ्रॉम द 1986 मूवी Amrit, the 1986 movie Amrit. Here's Anuradha Podwar and Mohammed Aziz with... Duniya mein kitna dham hai. And after this song, we'll have the three songs from a movie song set. So let's enjoy the voice of... Anuradha Podwar and Mohammed Aziz.

तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह विद हम मर जाएंगे दैट इज फुल सॉन्ग बाय तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह वी गोना कंटिन्यू विद अरिजीत सिंह दिस टाइम इज पलक मुचाल द सेकंड सॉन्ग फ्रॉम आवर मूवी सॉन्ग सेट एंड दिस वन इज चाह में याना चाह में याना लेट्स एंजॉय तुलसी कुमार एंड पलक मुचाल

मेरी समन, मेरी तमन्ना, मेरी सोनिया, मेरी सोनिया, मेरी तमन्ना, दाइज हर रॉन्ग है जैसा। यस दैट्स द फीचर आर्टिस्ट इज किशोर कुमार एंड आशा भोसले। वी गॉट वन मोर टू प्ले बाय देम एंड दिस वन इज जगमग जगमग सी महफिल, जगमग जगमग सी महफिल। यस किशोर कुमार आशा भोसले।